0: भैया, अगर मेरी भाभी होती तो ये कागज हटा कर तुम्हें हुक्म देती कि चलो चलकर सो जाओ, सवेरे जल्दी उठना है, और तुम झट से जाकर रजाई में दुबक जाते।
1: अच्छा।
0: और अगर हमारी माँ होती तो तुम्हें समझाती कि बेटा, अगर एक अनजान लड़की ने तुम्हें धोखा दिया और शादी के वक्त पर भाग गई, तो तुम क्यों सन्यासी बनवासी बने जा रहे हो?
1: अरे पगली, मैं कहाँ सन्यासी बनवासी बने जा रहा हूँ। ये तो शुक्र करो कि लड़की शादी से पहले भाग गई, अगर शादी के बाद भाग जाती तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ही न रहता।
0: पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें मेरी सहेलियाँ कैसी लगी?
1: अच्छी है, बहुत अच्छी है।
0: अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन पसंद है? आशा, कुमुद, रेखा, जिसका भी नाम लो उसी से चट मंगनी पट गया।
1: चालू, जो तुम्हारे भैया की जीवन संगनी बन सके वो इनमें से कोई नहीं।
0: तो फिर वो कौन है? जो भी हो, मैं उसे मना लूंगी। पिताजी का अरमान पूरा हो जाएगा, मुझे मेरी भाभी मिल जाएगी, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। कौन है वो बताओ ना भैया, तुम्हें मेरी कसम।
1: उसका नाम है पूनम।
0: पूनम? शेखर भैया की विधवा, एक बच्चे की माँ? या तुम पागल हो गए हो, या दुनिया भर की कुंवारी लड़कियां मर चुकी हैं जो तुमने ऐसा सोचा, या फिर विधवा वेश की आड़ में पूनम ही तुम पर डोरे डालती रही है।
1: शालू, शालू जी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन कीचड़ और गंगा जल में फर्क नहीं समझ सकती।

के छुप छुप के सनम रात भर जागेंगे हम, उनसे छुप छुप के सनम आंख झपके ना कभी चांद तारा।

0: ঘোড়া চতুরা এক পেরায় না, ইয়া ঘোড়া বললা ইয়া চতুর বললা।
1: एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, अपने ही जाल में फंसत जात, हम मरत जात।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते परवाज रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूबसूरत श्रोते हो।

0: जट बकरे बलाउंदे
1: बड़े ना दुखा कहंदे
0: जट बकरे बलाउंदे
1: बड़े ना दुखा कहंदे
0: पर हट जा रकाने।

0: करने लगा था। मोनिका
1: बहुत सोने
0: और उन्होंने गीत बड़े हिट गीत ने उन्होंने।

0: मैडम जी, हेलो जी। भाई साहब, खाना गाना बहुत खूबसूरत सी, लेकिन तुहाडा म्यूजिक जेड़ा है वो नहीं सी सुनिया जा रहा। कदी सुनिया जाता सी, कदी नहीं सुनिया जाता सी। पहला ओदी
1: हाँ जी
0: प्लीज
1: कट हो रहा
0: पहला
1: है,
0: ओदी
1: प्रॉब्लम है जी।
0: सेटिंग चंगे तरीके ना कर लो, ते जदों तुसी रेडियो
1: ठीक है
0: ते
1: जी,
0: आउंदे हो ते
1: हाँ जी
0: ओ साडे कोल इन्ना टाइम नहीं हुंदा मेरे वीर के अहीं वेट करिए कि तुसी कदों सेकंड कर ओदी सेटिंग कदों करदे हो। सानू
1: ठीक है
0: टेलीफोन
1: सर,
0: तुसी उदों करना जदों तुहाडी पूरी सेटिंग हो चुकी होवेगी।
1: ओके सर,
0: हाँ
1: ओके
0: जी, ते
1: ओके सर,
0: एडजस्टमेंट ते आवाज़ जेड़ी है ओदी क्वालिटी वधिया नहीं आ रही,
1: ठीक है सर,
0: ते फिर भी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद सारियां चीज़ां वल ध्यान करके कि तुहाडी वेखो तुसी इन्नी मेहनत करके रेडियो ते आउंदे हो, सुनन वालेयां नू परफेक्ट सुने ते सही तुहाडे साज ते आवाज़।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल
0: हाँ जी, तो मेरे वीर नेक्स्ट टाइम
1: बिल्कुल
0: ये पूरा परफेक्ट करके सारा सिस्टम, ते फिर आयो ते नाले टाइम दे विच 5:30 होण तो पहला पहला आयो।
1: ओके सर,
0: ये
1: जरूर
0: बहुत
1: सर,
0: बहुत मेहरबानी, धन्यवाद आप जी दा है। थैंक यू,
1: थैंक
0: ओके,
1: यू
0: सत
1: सो मच।
0: श्रीकाल जी, सत श्रीकाल। सो ये सन जी मैडम जी हुणी जिन्हां तक ना इन्हां दी सैटिंग कोई वधिया नहीं हुई क्योंकि वो ऑन एयर वधिया डिस्प्ले नहीं सी हो रहा, ते मैं उन्हां नूं कहा कि भई नेक्स्ट टाइम परफेक्ट करके सारा कुछ ताकि तुहानूं भी मज़ा आए, सुनने वालेयां नूं भी मज़ा आए। सो देशां विदेशां च सुन रहे दोस्तों, मैं गल कर रहा सी दिल्ली दे एजिटेशन जो हुई है, ते वो गल मैं अगे भी जे मैं अद्धा घंटा होर भी करदा रहा ते इहो कुछ ही करनी सी। मुद्दे दी गल मैं तुहाडे नाल कर दित्ती है, ये बहुत बुरी गल है। भावें उन्हें इस्तीफा दे भी दिता है, अगलिया के 20 तो उपर धी पुत मरे ने, कुड़ियां नू किदां ढा ढा के कुटिया गया वै, उन्हां दे यार टीन एज कुड़ियां सिर कि तरह बंदिया के पाड़े ने, और डंडिया च किल ला के, कि पुलिस है जिन्हों किन्ने आर्डर दिता है अगर डंडे में किल ला के तुसी डंडे मारने ने लोगों नू उत्थे, है ये क्रिमिनल ने, ये देश के दुश्मन ने, कोई बागी लोग ने, बगावत कर रहे ने भारत के नाल, ये कि कौन ने, ये देश के दुश्मन वो ने जेडे जुम्मेवार पदवियां ते बैठे ने, ते अपनी ड्यूटी दी अपनी ड्यूटी चंगी तरह परफॉर्म नहीं कर रहे, वो लोग इस काबल ही नहीं है। ते जनता का कसूर है कि तुसी इन्हां लोगों नू वोटां क्यों पाउंदे हो जेड़े इस काबल ही नहीं है, हर वारी जितते किदां ने। मैनू ना एक किसी ने कार्टून मतलब कि फेसबुक पर पाया सी, बहुत वधिया लगा, मैं तुहाडे नाल सांझा करदा, उहदी शकल तुहानू आपे ही दिस पेगी। एक खोता चबारे ते चढ़ाया सी, 2-3 मंजिली बिल्डिंग दे उत्ते चढ़ के खलोता सी, एक लागे औरत खलोती ही ते वह लोगों वल वेख के कहिंदी है, ये ना सोचो कि खोता लाउणा किदां हुण 4th मंजिल तों, जरा ये सोचो भी इनू 4th मंजिल ते चढ़ाया किन्ने है। वंडरफुल गल सी। ये नाल ही दोस्तों साडा अज दा प्रोग्राम इत्थे ही खत्म हुंदा है, ते देशां विदेशां च सुन रहे सब दोस्तां नू मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, एंड अ वेरी वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल द लवली एंड स्वीट पीपल ऑफ दिस प्लैनेट।

दुनिया के मेहरबान दोस्तों, ते प्रवास रेडियो फ्रैंकफर्ट के खूब खूबसूरत श्रोतों, ए मोहब्बत दा पैगाम देने वाला दोस्ती अते भ्रातरी भाव दिया खुशबुआ खिलारदा, वाह वाह। आप सब की जिंदगी के खेड़िया च वाधा करदा,

वाह जी वाह, वंडरफुल सॉन्ग, बहुत खूबसूरत गाना। दोस्तों उम्मीद है आप जी ने भी पसंद आया होगा। तो मैं अपनी एक रचना थोड़े नाल पेश कर दा, उहदे बाद आप जी वाल आवांगा, आप जीआं जीआं कालां लांगा। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां, ते ना अगे किस्मत सिर चुका हां। मैं मुकद्दर दा मुहताज नहीं हां, ना अगे किस्मत सिर चुका हां। दसा नौं दी मेहनत करदा हां, मैं किस्मत खुद बनाउंदा हां। दसा नौं दी मेहनत करदा हां, मैं किस्मत खुद बनाउंदा हां। मैं इना हथा नाल अपने हथा ते मुकद्दर दियां लीकां लाउंदा। वेलड़ भार ने सोहनी धरती ते, मैं अगे किरती सिर चुकाउंदा हां। मुकद्दर किस्मत मेरे हाथ विच है, तवीतां नू मैं चुल्हे दे विच डाउंदा हां। मुकद्दर किस्मत मेरे हाथ विच है, तवीतां ते तांत्रिकां नू मैं चुल्हे दे विच डाउंदा हां। पखंडी बाबे ने वैरी अकलां दे, ओए मैं

0: और क्या की हम सब दिन
1: जी दोस्तों, गुरु रविदास जी की बाणी वक वक रागां विच दर्ज है। जिवें कि श्री राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है, गौरी राग दे विच पांच शब्द, आसा राग दे विच छे शब्द, गुजरी राग दे विच एक शब्द, सोरठ राग दे विच सत शब्द, तनासरी राग दे विच तीन शब्द, जैतसरी राग दे विच एक शब्द, सूही राग दे विच तीन शब्द, बिलावल राग दे विच दो शब्द, गौंड राग दे विच दो शब्द, रामकली राग दे विच एक शब्द, मारू राग दे विच दो शब्द, केदारा राग दे विच एक शब्द, भैरव राग दे विच एक शब्द, बसंत राग दे विच एक शब्द, ते मलार राग दे विच एक शब्द उन्होंने उचारिया है जी, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच दर्ज हन। उन्हां दे कुछ प्रसिद्ध शब्द जेडे है वह है, तोही मोही मोही तोही अंतर कैसा, तू मैं हां मैं तू हां साडे विच की फर्क है। जिवें कि बेगमपुरा शहर का नाओ, बेगमपुरा शहर का नाम है जिथे कोई गम नहीं, मेरी संगत पोच पोच दिन राती, मेरी संगत हमेशा रब दे नाम विच लीन रहिंदी है। संत तुझ तुझी तन रंगत प्राण, संत दी भगती नाल ही जीवन सुखी हुंदा है, तुम चंदन हम इरंद बापुरे, तू चंदन है मैं एक छोटा जिहा बूटा हां। जी दोस्तों, साडे नाल दिल्ली तो आराधना सिंह जी जुड़े हन, जो कि इकताली दे इकताली शब्द उन्होंने गाए हन, उन्होंने याद किते हन, ते असी उन्हां दा ते एक शब्द थानू असी सुनाने हां, जो कि क्योंकि वो साडे नाल लाइव होके गा रहे हन, ते असी उन्हां दा एक रिकॉर्डेड जिहड़ा शब्द है वह थानू सुना रहे हां जी। जी सुनो जी।

0: हां जी, सतगुरु रविदास जी दे पिता श्रीमती श्री मान संतोख दास जी ते माता श्रीमती कलसा देवी जी सन। उन्हां दा ब्याह 12 साल दी उम्र विच पिंड मिर्जापुर दी माता लोना देवी नाल होया। उन आप जी दे घर एक पुत्र ने जन्म लिया जिस दा नाम विजय दास रख्या गया। सतगुरु रविदास जी चमार वजो शनाखत करदे सन अते पेशावर जानवरां दे चम दा काम करदे सन। हिंदू वर्ण मुताबक चमार कमजात बरादरी है। इस सिस्टम दे असर कारण गुरु रविदास जी महाराज नूं विद्यालय जाके इलम हासिल करन दा हक नहीं सी। चमार बरादरी नाल तालुक होण दे कारण बनारस विच मजलूमां लई आवाज बुलंद करन करके सतगुरु रविदास जी नाल बद सलूकी कीती गई। सांझी वालता दा सुनेहा दिंदिया ए उस समय दी लुकाई विच मौजूद ऊच नीच छुआछात ते पखंड दे सख्त खिलाफ बोले। दक्षिणी एशिया दुआले दूर दराडे सफर कर गुरु रविदास जी ने रब्बी शख्सियत नाल मुलाकातां दे नाल रब दी सिफत बंदगी दे वाक सच इलाही सुनेहा दिता। राजा पीपा, राणी मीराबाई, राणी चालाबाई ते होर भी इना दे कई मुरीद सन। जी आराधना जी, अगला शब्द तुसी केड़ा सुनाओगे जी?
1: जी वैसे ते मैं सारे शब्द सारे दो दो बजंदे सी सानू, सवेर दे चार भी बजंदे सी सर। एक शब्द नू गांदिया गांदिया उदे मायनिया नू समझना, फिर उदे उच्चारण नू, खास करके उच्चारण अगर थोड़ा कम्पलीट है तो फिर तुसी शब्द गा सकदे हो। फिर मैं सारा कुछ मैनू राकेश जी ने दसिया क्योंकि मेरे शब्दां दे सीनियर ओह सीगे और गजलां दी और फिल्मी गाणिआं दी मैं उहनां दी सीनियर सीगी, इस करके साडी म्यूचुअल बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग सीगी। ते सारे शब्द एक एक लाइन ओह मैनू समझांदे सी, इहनू इदां कहना, इहनू इदां कहना। ते इह जिहड़ा शब्द हुण मैं सुणान लगी आ इह गुरु रविदास महाराज जी फरमा रहे ने, कूप भरियो जैसे दादरा कुछ देश विदेश न बोझ, ऐसे मेरा मन दिखिया बिमोया कुछ आरा पार न सूझ। और बहुत सोना शब्द है, आप सब नूं बहुत पसंद आएगा कि ए भी अपना रिकॉर्ड करना है। आप सब का सहयोग रहा, आप अपना आशीर्वाद देना तो जरूर वहां पर रिकॉर्ड करेंगे। सो मैं ए आप सब नूं सर्वन करा दूंगा, आप अपना पहले सर्वन कर दूंगा।

0: మటికు పుత్రా నచ్చు మటికు పుత్రా నచ్చు మటికు పుత్రా నచ్చు జగతు.
1: हां जी, गुरु रविदास जी का समाज ते प्रभाव बहुत ही गहरा ते क्रांतिकारी सी। उन्होंने जात पात दे भेद भाव नूं चुनौती दित्ती अते मनुखी समानता का संदेश दित्ता, जिस नाल दबे कुचले वर्गां नूं आत्म सम्मान ते हक लई खड़ा होण दी प्रेरणा मिली। उन्हां दी गुरबाणी ने लोकां नूं रस्मां ते अंध विश्वासां तों मुक्त करके रब नाल सिद्धी भगती दा राह दस्या। बेगमपुरा वर्गे शब्दा राही उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की, जिस विच कोई गम नहीं, कोई जात पात नहीं, सब नूं न्याय मिलता है। उन्होंने उपदेशा ने भगती अंदोलन नूं मजबूत किया। मीराबाई गुरु नानक वर्गे महान संतां नूं प्रभावित किया। अज भी गुरु रविदास जी दीआं सिख्यावां समाजिक न्याय, समानता अते मनुखता लई प्रेरणा दा स्रोत हन अते लोकां नूं भाईचारे ते रूहानी चानण वल तुरन लई प्रेरित करदियां हन। जी दोस्तो, नमस्ते सलाम। अज दे खेड़ा लाइव शो दे विच बस इन्ना ही। आराधना जी, तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद, तुसी अपने कीमती समें दे विचों समां कढ़िया ते श्री गुरु रविदास जी दे शब्दां राही साडे स्रोतियां नूं निहाल कीता। जी असीं आशा करदे हां कि साडी इह सांझी कोशिश तुहानूं पसंद आई होगी। जी आराधना जी, लास्ट एक मिनट विच की कहना चाहोगे?
2: जी मैं यही कहना चाहांगी कि गुरु रविदास महाराज जी दे चरणां च सारे जिनी सृष्टि दे लोक ने सारी संगत जुड़ी रवे और बाणी सुनदे रहन, बच्चा नूं भी सिखाउण और घर घर बाणी सुनाई जावे, बच्चा नूं भी सिखाई जावे, आप भी सुनिया करो। बाणी तो बच के मैनू कोई भी लिरिक्स अच्छा नहीं लगता, वैसे प्रोफेशन है साडा गाना बजाना, पर इस करके गीत गजल भजन गाई दी, लेकिन जो शब्द बाणी च आनंद है ना, सिक्ख्या भी है और तुहानू बल भी मिलता है और पूरी तुहानू ऊर्जा मिलती है बाणी पढ़न नाल। ते मैं ते यही कहांगी कि बाणी पढ़िया करो, सुनिया करो और एक दूसरे नाल बाणी बारे ही चर्चा होनी चाहिए। आप जी दा अनेक अनेक धन्यवाद, तुसी इन्ना समय मैनू दिता अपने अनमोल समय चो, और मैं प्रभात रेडियो दी हमेशा आभारी हां, हमेशा आभारी हां और हमेशा आभारी रहांगे। और साडे जेडे श्रोता सुन रहे ने, आप सब नू बड़े अदब बड़ी आदती नाल सत श्री अकाल, और इसे तरह तुसी प्रभात रेडियो नाल जुड़े रहो, साडे केड़ा साहब जी दे नाल प्रोग्राम सुनदे भी रहो और अपनी गल भी अपने विचार भी सांझे करिया करो। मैं तो यही कहूंगी सर, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद आराधना जी, धन्यवाद जी। हां जी दोस्तो, बस खेड़ा लाइव शो दे विच बस अज इन्ना ही। फिर एक नवा प्रोग्राम जानकारियां भरपूर लैके थोड़े नाल असीं जुड़ांगे जी।

0: जनहित विच सूचना मशहूर होम्योपैथिक कंसल्टेंट डॉक्टर गुरदीप सिंह संधू उमर दे 75वीं साल दे विच मेडिकल प्रैक्टिस दे 50 साल पूरे होण ते अमेरिकन इकॉनमी दी सब तो माड़ी हालत होण करके ए ऐलान करदे ने कि हरेक बीमार व्यक्ति जो किसी भी उमर दे विच किसी भी बीमारी दा इलाज करांदा थक गया है तां जो भी उसकी जेब इजाजत दिंदी होवे ओही देके इलाज करवा सकता है। बस इना ख्याल रखियो कि मुर्गी भी ना मरे ते अंडे भी मिलते रहन, इना दे इलाज करन दी समर्था बनी रहे ते तुहाडा घट खर्चे च इलाज हुंदा रहे। कॉल करो 408-687-1899।
1: दोस्तो डॉक्टर साहब अपने नाल फिर जुड़ गए ने कल दी तरह, सो अपना जेड़ा अधूरा प्रोग्राम विच रह गया सी ओनू पूरा करदे आं जी, ते अगे तो फिर आपां अगले प्रोग्राम वल भी जाया करांगे। ते अज दे शहीदी दिहाड़िया दे उपर खास प्रोग्राम जेड़ा थाडे तक असीं पहुंचा रहे हां
2: जी। डॉक्टर शहीदी पंद्रवाड़ा जो दिसंबर दा आखरी दो वीका है ओदे संबंध विच वापरिया सिख इतिहास दीआं घटनावां दा जिक्र कर रहे हां, और उन्हां घटनावां दा जिक्र करदे होए कल

0: हेलो।
1: हाँ जी, स्पीकर तैयारी की यार पंगा रोई दा।
0: पता नहीं थोड़ी आवाज है और बंद हो गया,
1: वो है ना,
0: कीड़ा
1: जदों
0: हो गई
1: वो स्पीकर ते लाना दे आउंदी है,